0: पश्चिम न में जो उड़गी वेरे तुम लोग नींद हमें जो उड़गी रीन तुम लोग नींद हो अलीन्या दुन्नो बाबा बेलुई तुम लोग नींद हो
1: वेंडी वोका अकी वसुदे